0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एकतरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood. One Big Ticket brings you many chances to win.
1: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
0: 5 consolation prizes from 100,000 dirhams all the way up to 1 million dirhams.
1: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
0: And 4 weekly electronic draw winners of 25,000 dirhams each.
1: Buy now at bigticket.ae.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 7:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: got an insurance quote? Before you say yes, check insurancemarket.ae. One quick comparison could make all the difference. Call 800-ALFRED.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स 9th ऑफ सितंबर, वेंसडे है, मंडे पार्ट 3 चल रहा है मेरे लिए. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल यार, जो कहते हैं कि यार हम घूमने आए हैं, हम तो सब कुछ घूम लेंगे, चप्पा चप्पा कोना कोना घूम लेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे. एंड देन देयर आर सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो बोलते हैं यार हम सब कुछ नहीं घूम रहे हैं, हम कुछ कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हमें ये जगह इतनी अच्छी लग गई है ना कि हम कुछ तो छोड़ के जाएंगे ताकि वापस से वापस आ पाए.
3: ना पड़े तू मेरी कितना सोना लेना मेरा ना.
2: They do it everything for a reason. Talking about one visa for six Gulf countries, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman and Kuwait. Kab aane wala hai, update kya hai, giving you all the details in a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2. Good morning.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: 106.2 The Beat of Bollywood. अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
1: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 7:22 by the clock, it's a Wednesday, it's sunny and 33 degrees around with humidity 46%.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ इन द लॉन्ग अवेटेड जीसीसी यूनिफाइड टूरिस्ट वीजा जल्दी लॉन्च हो सकता है। बेसिकली वन वीजा फॉर ऑल सिक्स गल्फ कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ओमान एंड कुवैत। आपको सेपरेट टूरिस्ट वीजा नहीं चाहिए होगा। दिस वॉज एक्चुअली प्रपोज इन 2023। अभी अनाउंस नहीं हुई है लॉन्च डेट, द कॉस्ट और द वैलिडिटी, बट इन सिंपलर टर्म्स वन वीजा सिक्स गल्फ डेस्टिनेशंस, मेकिंग इट इजियर फॉर टूरिस्ट कि वो एक बार आए और सब कुछ इकट्ठे ही एक्सप्लोर कर जाए। एंड टूरिस्ट वीजा से मुझे याद आया भाई, टूरिस्ट आई जस्ट लव दिस स्पीशीज ऑफ टूरिस्ट। ओके, आओ घूमो फिरो, टॉप नॉच घुमक्कड़ वाइब विच इज माइन। उसके बाद मेरे 20,000 स्टेप्स हो जाए, मैं बहुत खुश रहती हूँ। Coming up next, Jab Talak from Cocktail 2, keep it locked to Big 106.2.

0: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी, आपके साथ. इट्स वेडनेसडे मॉर्निंग एंड यार ट्रैवल टूरिज्म की बातें कर रहे हैं. ट्रैवल तो वो लोग भी करते हैं यार, उनको भी हम ये जवानी है दीवानी का बनी मानते हैं जो रोज मेट्रो से ट्रैवल करते हैं. जो ये गहरा बॉन्ड रिश्ता बन जाता है ना यार मेट्रो के साथ फ्रॉम दैट ट्रैवल, आई एब्सोल्युटली लव इट. जरूरी है आज दीदार बिकॉज इट्स बर्थडे. दुबई मेट्रो का आज बर्थडे है. Turned 17 years, teenage में अभी कदम रख चुके हैं. Gonna talk about that in a while. Keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 8:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Already bought insurance somewhere else? Maybe don't check insurancemarket.ae now. You might wish you had checked before. Next time, compare first. 800 Alfred.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड 17 साल पूरे हो चुके हैं दुबई मेट्रो को एंड यू नो व्हाट 17 इयर्स बिलियंस ऑफ जर्नीज एंड काउंटलेस मेमोरीज दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रैवल थिंग एनीमोर इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर एंड माइन दुबई स्टोरी 9th सितंबर 2009 को दुबई मेट्रो शुरू हुआ था एंड सिंस देन 17 इयर्स हो चुके हैं And then there's this number, by the end of 2025, Dubai Metro had carried more than 2.8 billion passengers with around 295 million journeys recorded in one single year of 2025. Why bata rahi hu yaar, travel journeys ka jo stories hoti hai na, I absolutely love it. मुझे बहुत बार याद है कि मैंने अगर 40-50 मिनट्स की राइड ली है मेट्रो की तो मैंने एक किताब खत्म कर दी है व्हाट हैज बीन योर मेमोरीज विद दुबई मेट्रो कॉल करो मुझे 800-1062 पर गोना डिस्कस अबाउट दैट एंड अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे दुबई मेट्रो भारत उसका ट्रैक कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस वन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 800-1062 इज अ टोल फ्री नंबर डू कॉल मी शेयर योर मेमोरीज विद मी

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलरस कहाँ है अलरस?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलरस।
2: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
3: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
2: डोंट वरी, आई फाउंड द बेस्ट बैक टू स्कूल रेंट अ कार ऑफर ऑन selfdrive.ae। सेल्फ ड्राइव कार्स रेंटिंग फ्रॉम जस्ट 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Why spend an extra dirham on insurance? Compare at insurancemarket.ae and find the right cover at the right price. Better choices start here. 800 Alfred. InsuranceMarket.ae.
6: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: For Monday Part 3, the main areas to watch are E11 around Al Khan, Al Mamzar and Sharjah border. E311 पर भी आपको Sharjah Industrial Area वाली side traffic मिल जाएगा. It is also building up around Al Bursa, Al Khuz and JVC. If you're stuck somewhere, let me know. 800-1062 पर.
6: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. With zero penalty on early returns. Big 106.2.

जाता तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ. एंड कोई 2026 में रह तो नहीं गया, सब 80s में वापस पहुंच चुके हैं ना. बिकॉज द अमाउंट ऑफ 80s ट्रेंड, चैट जीपीटी को बोलो कि हम 80s में कैसे लगते थे, दैट ट्रेंड मैंने इतना देख लिया इंस्टाग्राम पर कि खोलते ही लगता है कि मैं सोशल मीडिया साइट पर नहीं, मैं किसी टाइम मशीन से वापस जा चुके हैं. एंड दिस वूमन आई जेन्युइनली वांट नॉट 80s, डायनासोर एरा वापस ले आया. नॉट इवन किडिंग. Honestly, सुंदर तो लग रहा है यार. Very pretty photos. इतनी हाइट genuinely है नहीं आपकी 2026 में भी, लेकिन सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप 80s में भी ऐसे 1% दिखते? मैंने हर 80s वाली फोटो लाइक जरूर करी है. आई एब्सोल्युटली लव द ट्रेंड. बस वो थोड़ा रैंट निकल आता है. व्हाई? बिकॉज़ यार होता है ना कि मैं तो क्यों नहीं लग रही इतनी सुंदर, व्हाई नॉट मी? वेल, इस बदहजमी से बचने के लिए, इफ यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन, ऑल यू नीड फॉर इफेक्टिव रिलीफ नेचुरली इज डाबर पुदीन हरा. जस्ट वन टाइनी पर्ल पैक्ड विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स व्हिच गिव्स योर स्टमक इंस्टेंट सूदिंग रिलीफ. इट्स पॉकेट साइज्ड, फ्रेंडली है, क्विक नेचुरल वे है, कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो. स्टे इनडाइजेशन free with natural way with Dabur Pudin Hara. Consult your doctor or pharmacist before consumption. It's also available on Noon Minute. Baat karenge abhi aur ki patlog jo Big 106.2.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with an easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
7: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
8: One Big Ticket brings you many chances to win.
9: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
8: 5 consolation prizes from 100,000 dirhams all the way up to 1 million dirhams.
9: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
8: And 4 weekly electronic draw winners of 25,000 dirhams each.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: मॉर्निंग रश इन फुल स्विंग दुबई शारजा कॉरिडोर जो है वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा आपको. इनसाइड दुबई ट्रैफिक इज ऑल्सो बिल्डिंग अप अराउंड अल राशिदिया नादल हमर एंड रसूल खोर अलॉन्ग D62 टुवर्ड्स E44. अल बर्शा अलकूज एंड JVC पर भी आपको स्लोअर मूवमेंट दिख रही है. हैविंग सेड दैट इट्स कंपैरेटिवली बेटर ऑन शेख जायद रोड थ्रू जुमेरा अल सतवा एंड जबीर. कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में डू लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: is Shashwat. It's Dev Madhubanti. Back to your track song. Naam tha Shararat from the film Dhurandhar. And what an energetic track. Much needed for Monday Part 3. Wednesday ki baat kar rahi hoon.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. वेंसडे थोड़ा जल्दी गुजर जाए आपका, फ्राइडे की गुड न्यूज दे देती हूँ. हैवान रिलीज हो रही है फ्राइडे को, स्टारिंग सैफ अली खान और अक्षय कुमार. इट्स अ ऑफिशियल हिंदी रीमेक ऑफ द फिल्म 2016 की मलयालम फिल्म थी थ्रिलर ओपम, उसका ये रीमेक है. द बेस्ट पार्ट इज इट इज डायरेक्टेड बाय प्रिया दर्शन एंड अक्षय कुमार फिर से आ रहे हैं फिल्म में साथ में. हैवान रिलीज हो रही है फ्राइडे को. एंड क्यों बात कर रही हूँ इतनी ज़्यादा इसके बारे में, बिकॉज अक्षय कुमार का आज बर्थडे भी है. मूवी की बात हो, फ्राइडे की बात हो, मैं कैसे नहीं बात. अभी नहीं छोड़ के जा सकती मूवी देखने, बट फ्राइडे फ्राइडे इज द डे. यू कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 एंड हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 9:08
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बॉलीवुड
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
7: Recalculating route to Sharaf DG for back-to-school shopping.
8: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in-store or online. DNC Supply.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 37 degrees out there right now with 35% humidity. लेकिन टेम्परेचर चाहे गिरा है इवेंचुअली, बट सर्दियां आने से पहले, यूए के विंटर्स आने से पहले एक बार 47 degrees तक जरूर जाएगा। That's been forecasted.
6: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Call 800-ALFRED. Buying insurance is easy. It's when something goes wrong that your choice really matters. That's when insurancemarket.ae delivers.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. वेंसडे द मिड वीक बहुत लंबा लगता है, लेकिन उस ही मिड वीक पर आपको कोई वेकेशन की बात कर दे, वेकेशन प्लान करवा दे, उससे अच्छा क्या हो सकता है. ऑन द टॉप ऑफ दैट एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप. मैं बात कर रही हूँ बिग चेक इन टू जर्मनी की, जिसमें आप जा सकते हो हमारे साथ ऑन अ ट्रिप. ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062. I'll repeat 0543091062. Imagine करो, अगर आप अभी नहीं मन कर रहा काम पे जाने का, लेकिन वेकेशन पे जाने का हमेशा मन करता है, ट्रिप पर गए हो ग्रुप के साथ, इस गाने पे नहीं नाचोगे यार.

0: इसका हुक स्टेप निकल ही आता है, स्पेशली जब हम ग्रुप में हो इस पे डांस कर रहे हैं। आई एब्सोल्युटली लव इट, द वाइब इज टॉप नॉच। यू कैन आल्सो कम विद अस। अ बिग चेक इन टू जर्मनी 0543091062।
1: इट इज पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर्स Ford and Sharaf DG, travel partner AFC Holidays, exclusively on Big 106.2. Sheesh.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस 48 आवर्स में एक वीजा पाइए ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
0: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. The Big Mix. Miss kiya gaya?
3: कर ही नहीं सकते, चाहोगे तो नहीं कर सकते.
4: हाय कोमल, जर्मनी की तैयारी क्या करी है कोमल आपने?
5: तैयारी, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू नो, आई मीन वंस आई एम फाइनलाइज्ड तो जस्ट बैग लेके निकलना है, दैट्स इट.
4: तो बैग्स पैक्ड हैं आपके, ओटीडी रेडी है,
5: एवरीथिंग.
4: अभी तक तो आ जाना चाहिए था.
5: नशे से चढ़ गई, नशे से चढ़ गई. आई एम ऑलरेडी डांसिंग बाय द वे. हां,
4: मुझे लगता है दिस इज यू जब आप जर्मनी जाओगे. नहीं,
5: यस
4: यस, थैंक यू सो मच कोमल, आपका नाम आज के लिए रजिस्टर हो जाता है. एंड लेट्स सी आप नेक्स्ट ड्रॉ में जो निकलता है जर्मनी जाओगे या नहीं. कांग्रेचुलेशंस.
5: थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच.
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM. द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं शारजा से, एक्सपेक्ट स्लोअर मूवमेंट ऑन E311 एंड अलाउ सम एक्स्ट्रा टाइम ऑफ कोर्स इनसाइड दुबई. कीप एन आई ऑन E44 रसल खोर एरियाज. ट्रैफिक इज आल्सो बिल्डिंग अराउंड अलकूज. कहीं और फंसे ट्रैफिक में डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर.
0: गेट रेडी फॉर स्कूल विद selfdrive.ae. रेंट अ

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज हमने कॉल किया है गौरव को. हाय गौरव.
2: हाय अवनी, हाउ आर यू?
1: बहुत बढ़िया. कैसे चल रहा है आपका मंडे पार्ट 3 बाय द वे?
2: मंडे पार्ट 3 आई हर्ड यू सेइंग बट देन इट इज लाइक मतलब वही वो मिड आई मीन मिड वीक ब्लो एंड ऑल दैट यू नो.
1: ट्रू दैट.
2: इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ पुश बट देन इवेंचुअली कमिंग टू द वीकेंड तो थोड़ा बेटर लग रहा है.
1: पर अच्छी बात है ना, मिड वीक में वेकेशन प्लान हो रही है.
2: Yeah, that's actually amazing. That's wonderful. That's the best part of it.
1: कितनी planning कर ली है अभी जर्मनी के लिए?
2: Yeah, I'm just manifesting कि like you know because I've not had a solo trip in a very long time. Of course, it's all together, but then away from I've never left my family, so it will be one of the like you know one of the soul experience for a soul trip in one way.
1: करेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. बॉलीवुड बीच टू जर्मनी. मैं आपको एक म्यूजिक सुनाऊंगी, आपको गेस करना है वो सॉन्ग कौन सा. आर यू रेडी?
2: या लेट्स गो, लेट्स ट्राई.
3: चली आई उधर करो फिर चली गई यार.
1: आई आई सॉन्ग आया
2: मुंडे
1: दी. अब तक तो आ जाना चाहिए यार, कम ऑन.
2: बिल्कुल बिल्कुल. लंदन ठुमकदा फ्रॉम क्वीन.
1: लंदन ठुमकदा फ्रॉम क्वीन, लेकिन हम जर्मनी में ढूंढेंगे. Congratulations, Gaurav. Your name gets registered. आज ही आपने बॉलीवुड बीच टू जर्मनी जीता है. लेट्स सी आप जर्मनी हमारे साथ जाते हैं या नहीं जाते. आर यू एक्साइटेड?
2: वेरी वेरी वेरी मच.
1: अगर आपको चलना है हमारे साथ जर्मनी, करना क्या होगा? टाइप करो बिग चेक एंड स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल. खेलेंगे बॉलीवुड बीच टू जर्मनी, एक छोटी सी गेम. लेट्स सी वो जीतते हो या नहीं जीतते हो. बट वन थिंग्स फॉर श्योर, वी आर गोइंग टू जर्मनी.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

जब भी ट्रैवल करते हैं ना, बाहर जाते हैं, लेट तो होना मतलब बनता ही है। हम कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके लेट तो हो ही जाते हैं। सब इसी स्पीड पर चल रहे होते हैं। Once again, Dubai date. किसकी बात कर रही हूँ मैं? A new GDRF है, दुबई मोबाइल पासपोर्ट कंट्रोल सर्विस की बात कर रही हूँ, जहाँ पर ऑफिसर्स प्रोसेस कर सकते हैं पैसेंजर के मोबाइल डिवाइसेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग देम टू गो ऑन अ फिक्स्ड इमिग्रेशन काउंटर। क्यूज में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लेट हो तो और लेट नहीं हो जाओगे, सिर्फ अपनी गलती के लिए लेट होते हो, मजाक से हटके। अब कौन कौन ये यूज कर सकता है? डिपार्चर के लिए यूएस सिटीजंस, रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स यूज कर सकते हैं। अराइवल के लिए सिर्फ यूएई सिटीजंस एंड रेजिडेंट्स ही यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए। टूरिस्ट वीजा विजिटर्स जो हैं अभी बाद में ऐड होंगे इसमें। बेसिकली दिस इज एक्टिवेटेड व्हेन नीडेड, स्पेशली ड्यूरिंग पीक पीरियड्स, लॉन्ग क्यूज, या फिर जब ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो तब तक जाके। ऐसे आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑफिसर मैं लेट हो गया हूँ, प्लीज आप मेरी फटाफट इमिग्रेशन करवा दो। नॉट हैपनिंग। रिक्वेस्ट करने पे ये कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अगर जेन्युइनली लॉन्ग क्यूज हैं, पीक आवर्स चल रहे हैं, तो ये बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से ही लेट निकलोगे। कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 10:07।
1: Bollywood.

0: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy, through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: 38 degrees out there with 32% humidity, but the temperature will go high around 42 degrees.
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.com.

0: A bump, a break-in, a hospital bill. Suddenly, insurance really matters. That's when insurancemarket.ae delivers. For claims or cover, call 800-ALFRED.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज रात को 9 बजे आईफोन की नई सीरीज लॉन्च हो रही है आईफोन 18, आईफोन 18 प्रो मैक्स एंड द रूमर्स आर इट्स गोना बी द बिगेस्ट लॉन्च एवर. व्हाई? बिकॉज वो पहली बार फोल्डेबल फोन लेकर आ रहे हैं. फेस लॉक से हटकर वापस से हम बायोमेट्रिक पर जा सकते हैं. पर इट्स जस्ट द एक्सेप्शन. ऑल द गैजेट लवर्स वो 9 बजने तक का तो वेट कर रहे हैं एंड ऊपर से फोन की बात है यार. इट्स सच एन एसेंशियल थिंग ऑफ आवर लाइव्स. Having said that, you know, technology कहाँ की कहाँ पहुँच गई है. Just not the technology, the services भी. मैं बात कर रही हूँ self drive की. Now you can get school ready with self drive. Rent a car starting from 1099 dirham per month. Flat rate for the year, which has zero penalty on early returns. So now get school ready with self drive and keep it locked to Big 106.2.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: One Big Ticket brings you many chances to win
2: a guaranteed 20 million dirham grand prize,
1: 5 consolation prizes from 100,000 dirhams all the way up to 1 million dirhams,
2: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin,
1: and 4 weekly electronic draw winners of 25,000 dirhams each.
2: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! Khush hua!
6: There's one thing that I absolutely love, and that is winters. Oof, oof, maza aane wala hai. Hi, Gaurav.
7: Hi.
6: How are you?
7: All good.
6: ये कहाँ basement में बैठ के बात कर रहे हो?
7: नहीं, बस ये building के corridor में आ गया था.
6: तो आप ऑफिस में अभी भी तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
7: जी, किसी को बताऊंगा नहीं, अकेले अकेले जाऊंगा.
6: बहुत बढ़िया, वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ. बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है, देख के लगता है यू आर इनटू रियल एस्टेट.
7: Yes, right, that's right.
6: तो आपको हमारी क्या जरूरत है यार, रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है, वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं. मैंने सुना है गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
7: नहीं, जर्मनी नहीं, बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली.
6: ये देखो मैं कह रही हूँ रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है फिलहाल. तो आपका गाना है कौन सा गाना है गौरव?
7: वो हसीना वो हिलम पड़ी, कर गई जैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली, हाँ दिल में बेचैनियां है भरी.
6: ना ना ना ना ना ना ना ना ना, हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को. शॉर्टलिस्ट हो गए गौरव, कंग्रेचुलेशन.
8: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: Tanzeel just called to check E311 par bhi traffic hai, and I just checked about it. Moderate to heavy in pockets, particularly around Muhizna and Albersha South. JVC Hesa Street par bhi aapko slower movement milegi. Umm Sukim Street, Dubai Hills par aapko incident reported hai, isliye traffic wahan par bhi milega aapko. E44 Rasulkot congestion build ho raha hai around Dubai Safari Park and Warsan. Agar kahin aur phanse ho, do let me know, call karke 800-1062 par.
8: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: जिंदा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज अ बिग ब्रेकफास्ट. लेकिन ब्रेकफास्ट से मुझे याद आया कि मेरा अभी पेंटिंग है, करना है मुझे. लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे किस चीज की क्रेविंग हो रही है. आई एब्सोल्युटली लव सैंडविचेस. एंड जब सैंडविच की बात हो, पापा जॉन्स की बात कैसे नहीं हो सकती है. दे हैव लॉन्च इट्स न्यू अवन टोस्टेड सैंडविचेस इन यूएई, क्राफ्टेड ऑन सार्डो स्टाइल चबाता ब्रेड विद एन एक्सेप्शनली क्रंची बाइट दैट्स मेड टू बी हर्ड. They've got 6 bold varieties in this. And kyunki itni bhook lag rahi hai aur subah subah ki bhook hai, I can't even imagine the first bite and the first crunch. You can also try the new Papa John's sandwiches. Download the app today. Better ingredients, better pizza, Papa John's. And what a win-win deal with this. Coming up your way after this one, लगाना है मस्कारा from the film मैं वापस आऊंगा, which reminds me of कि मुझे भी लगाने जाना है मस्कारा. Keep it locked to Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: डाइजेस्टन कूल टिप्स विद डाबर पुदीन हरा।
3: Heavy meals can sometimes leave you feeling uncomfortable. Switch on your tummy ka AC with Dabur Pudin Hara. Just one tiny pearl with Ayurvedic mint oils gives your stomach instant soothing relief naturally.
2: Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way. Available on Noon Minutes. Consult your doctor or pharmacist before consumption.
1: Big 106.2. That's my song.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पाँच? पाँच।
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हाय कोमल, जर्मनी की तैयारी क्या कर रही है कोमल? आपने
3: तैयारी, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू नो, आई मीन वंस आई एम फाइनलाइज्ड तो जस्ट बैग लेके निकलना है, दैट्स इट।
2: तो बैग्स पैक्ड हैं आपके, ओओटीडी रेडी है,
3: एवरीथिंग।
2: अभी तक तो आ जाना चाहिए था।
3: नशे से चढ़ गई।
2: मुझे लगता है दिस इज यू जब आप जर्मनी जाओगे। नहीं,
3: यस।
2: थैंक यू सो मच कोमल, आपका नाम आज के लिए रजिस्टर हो जाता है। एंड लेट्स सी आप नेक्स्ट ड्रॉ में जो निकलता है जर्मनी जाओगे या नहीं। कंग्रेचुलेशन।
3: थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच।
0: मिड डे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनी only on big 106.2 the beat of Bollywood big 106.2 that's my song।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दी।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: Time check. It's past one lunch hour time. क्या लाए हो टिफिन में बताओ मुझे 800-1062 पर।
3: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
6: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हेवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा. योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ.
5: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: It's windy outside, but with a temperature of 39 degrees, which actually feels like 50, with humidity levels 36%.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: श्याम ये राजो छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo!
5: There's one thing that I absolutely love and that is winters. Oof, oof, maza aane wala hai. Hi Gaurav.
6: Yeah, hi.
5: How are
6: hi,
5: you?
6: Manti. All good.
5: ये कहाँ basement में बैठ के बात कर रहे हो?
6: नहीं बस ये building के corridor में आ गया था.
5: तो आप ऑफिस में अभी भी तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
6: जी किसी को बताऊंगा नहीं अकेले के लिए जाऊंगा.
5: बहुत बढ़िया वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ. बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है देख के लगता है. यू आर इनटू रियल एस्टेट?
6: यस राइट दैट्स राइट.
5: तो आपको हमारी क्या जरूरत है यार? रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं मैंने सुना है. गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
6: नहीं जर्मनी नहीं बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली.
5: ये देखो मैं कह रही हूँ रियल एस्टेट में बहुत पैसा है. पैसा ही पैसा है फिलहाल. तो आपका गाना है कौन सा गाना है गौरव?
6: वो हसीना वो हिलम पड़ी कर गई जैसी जादू घड़ी नींद इन आंखों से छीन ली हाँ दिल में बेचैनियां हैं भरी.
5: ना ना ना ना ना ना ना ना ना हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को. शॉर्टलिस्ट हो गए गौरव कंग्रेचुलेशन.
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Traffic is moving slowly on E11 Sheikh Zayed Road towards Sharjah. Congestion milega aapko Al Khan par. And then there is E311 par Mohezna wali side par bhi aapko traffic milega. There is also building up traffic on JVC on Hesa Street, Dubai Hills on Umsukim Street and Russell Court near the Alin Dubai Road. Agar kahin aur phase ho do let me know 800-1062 pe call karke.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
8: Ek aisi ladki jise dekhte hi dil ki har arzu sare khwab sare rang zinda ho jaye.
1: The Big Mix with Avni only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड दिस फ्राइडे दो फिल्में रिलीज हो रही हैं, अ क्लैश. वन इज सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार स्टारर फिल्म जिसका नाम है हैवान. द अदर वन इज लास्ट मैन इन टावर जिसमें बोमन ईरानी है, मनोज बाजपेयी हैं एंड दिव्या दत्ता भी हैं. दोनों ही काफी इंट्रीगिंग पिक्चर्स लग रही हैं, लेकिन आई जस्ट कांट वेट फॉर फ्राइडे बिकॉज वेंसडे तो मंडे पार्ट 3 तक पहुंच गया यार. फ्राइडे आ रहा है. नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग अप योर वे ओनली ऑन बिग 106.2. कीप इट लॉक्ड.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है। मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
1: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड एक कंफ्यूजन में फंस चुकी हूँ यार, सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हो. आई हैव नेवर अटेंडेड द एलुमनाई मीट जो स्कूल की होती है एंड आई रिसेंटली गॉट दैट मैसेज ऑन अ ग्रुप जो स्कूल नहीं बनाया था कि हम एलुमनाई मीट कर रहे हैं. अब आप में से किसी ने भी एलुमनाई मीट अटेंड करी है? क्या होता है यार, कैसी होती है? बिकॉज द डेट्स आर लाइक दैट कि शायद मैं अटेंड नहीं कर सकती, पर मेरा बहुत मन है एंड मन से ऊपर भाई मुझे अभी भी टीचर्स का खौफ चल रहा है. आई डोंट नो हाउ डू आई अटेंड, हाउ डू आई से नो टू माई ओन टीचर्स, कैसे मना करते हैं? मना करने तो चलो बात की बात है, लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली एलुमनाई मीट में, प्लीज़ मुझे बताओ कॉल करके 800-1062 पर. देख रहे हो खौफ जो टीचर्स का है ना, 800-1062 is a toll-free number. Call me here and tell me अगर आपने कभी भी alumni meet attend करी है, क्या होता है उसमें. 800-1062 it is. Keep it locked to Big 106.2.

0: बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: What if insurance gave you more than insurance? Buy anything from insurancemarket.ae and get My Alfred Premium free for 1 year. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ मैंने बात कर रही थी कि यार मेरे स्कूल की ना एलुमनाई मीट होने वाली है एंड आई जस्ट गॉट बैक इनटू फ्लैशबैक्स ऑफ माय स्कूल कि जब भी कोई ट्रिप आती थी ना ऐसे मम्मी पापा को ना मतलब प्लीड करना पड़ता था कि प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ सारे मेरे दोस्त जा रहे हैं, आपको पता है वंशिका भी जा रही है, पता है श्रेया भी जा रही है, एवरीवन इज़ गोइंग. लेकिन अब जब ये ट्रिप ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप आ रही है, पार्टिसिपेट, आई मीन हाउ, हु वुड नॉट डू दैट. 0543091062 इज द व्हाट्सएप नंबर, आपको वहाँ पर टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम, मैं करूँगी आपको कॉल, हम खेलेंगे बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी, देखते हैं आप ये सॉन्ग गेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. बाद में आपके साथ वाला दोस्त चला गया ना अगर
3: लंबर्गिनी चलाई जाने ओ, सानू भी चुटा दे दो इत्थे कल्ले
2: अकेले जाएंगे फिर. मैसेज पहले ही कर दो, बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री
1: बनाएंगे। High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: It's 39 degrees out there as of now, but it feels like 50 honestly. लेकिन high जाएगा 42 degrees तक आज के लिए, and humidity levels जो हैं 38% पे चल रहे हैं.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Check-In to Germany. कहा था मैंने अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज करना है Big Check-In space your name. And आज मैंने कॉल बैक किया है शालिनी को. हाय शालिनी.
2: हाय हाय अवनी, हाउ आर यू?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? तैयारी कैसे चल रही है जर्मनी की?
2: एकदम बढ़िया, बिल्कुल एकदम रेडी.
1: रेडी क्या क्या किया है रेडी आपने?
2: शॉपिंग कम्प्लीट, एवरीथिंग कम्प्लीट.
1: ओके परफेक्ट. क्या करते हो शालिनी आप?
2: I'm homemaker.
1: आपको तो वेकेशन नीडेड है, जब बोलो तब जाना.
2: yeah.
1: नहीं
2: या वेरी नीडेड.
1: ओके ओके, हम खेलने वाले बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी. तो उसमें मैं आपको एक सिर्फ म्यूजिक सुनाऊंगी गाने का, आपको गेस करना है सॉन्ग का टाइटल क्या है, सॉन्ग का नाम क्या है. डन?
2: ओके डन.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Gippy kare vaga track song and anthem crazy beat. What a groovy track.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड रिसेंटली थिएटर्स में ऑब्सेशन फिल्म रिलीज हुई थी. एंड क्या ऑब्सेशन बन गया था यार इस फिल्म का. हॉरर जॉनर की थी नहीं थी पता नहीं, ये थ्रिल तो मैं कहती हूँ भर भर के था. एंड व्हाट अ सक्सेस, व्हाट अ मैसिव सक्सेस, मेड ऑन अ बजट, टाइनी बजट ऑफ $750,000 और उसके ऊपर उन्होंने कमाया कितना, $500 मिलियन वर्ल्ड वाइड. बहुत ही अमेजिंग स्टोरी, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट. बट दिस टाइम अब सेकेंड पार्ट भी आने वाला है उसका. एंड डू यू रिमेंबर दिस ट्रैक, सुन के ही ना ऐसे घूस बम्स आ जाते हैं. नहीं, दैट निकी, नो, वी ऑल रिमेंबर द डायलॉग्स एज वेल. ऑब्सेशन वॉज एक्चुअली एन ऑब्सेसिव हिट ऑन बॉक्स ऑफिस. ऑब्सेशन 2 इज ऑन द वे, लेट्स सी कब रिलीज होती है. बहुत ज्यादा कमाने वाली है एंड प्रोडक्शन इस बार और लगेगी. कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:06। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सॉन्ग के नाम तो तेनु लहंगा, बट मुझे ये लहंगा नहीं, मुझे इस मूवी की टिकट्स चाहिए। कौन चल रहा है मेरे साथ देखने के लिए?
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड दृश्यम 3 द कंक्लूजन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, वी गोना रिव्यू दैट साथ में। लेकिन उससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 आ चुका है, ये थर्ड पार्ट आ रहा है एंड फाइनली इसके बाद का पार्ट नहीं आएगा बिकॉज इसमें कंक्लूजन ही लिखा है, दृश्यम द कंक्लूजन। द बेस्ट पार्ट इज, और मे बी द बेटर पार्ट इज, इसमें अक्षय खन्ना जो है उनकी जगह एक और एक्टर आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो कौन? इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज। बट मुझे बताओ यार, हम जो इतने मीम्स बना रहे थे, पढ़ रहे थे कि यार दृश्यम 3 आ गई है, 4 भी आएगी, 5 भी आएगी, ये आते जाएंगे, लेकिन द ट्रेलर आई वॉच, कोर्ट तक बात पहुँच गई है भाई। लेट्स सी, जस्टिस होती है नहीं होती है, फिल्म की स्टोरी कहाँ जाएगी। रिलीज होने वाली है ये फिल्म अक्टूबर 2 को। द हाइप इज रियल, आई एम टेलिंग यू। एंड अजय देवगन, व्हाट अ मैन। कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस वन, अंडरलाइन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! Kushua!
3: There's one thing that I absolutely love and that is winters. Oof, maza aane wala hai. Hi Gaurav.
4: Yeah, hi.
3: Have you?
4: All good.
3: ये कहाँ basement में बैठ के बात कर रहे हो?
4: नहीं बस ये building के corridor में आ गया था.
3: तो आप office में अभी भी? तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
4: जी किसी को बताऊंगा नहीं, अकेले अकेले जाऊंगा.
3: बहुत बढ़िया, वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ. बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है, देख के लगता है यू आर इनटू रियल एस्टेट.
4: Yes, right.
3: तो आपको हमारी क्या जरूरत है यार, रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है, वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं. मैंने सुना है गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
4: नहीं जर्मनी नहीं, बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली.
3: ये देखो मैं कह रही हूँ रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है फिलहाल. तो आपका गाना है कौन सा गाना है गौरव?
4: वो हसीना वो हिलम पड़ी, कर गई जैसी जादू घड़ी, नींद इन आंखों से छीन ली, हाँ दिल में बेचैनियां हैं भरी.
3: ना ना ना ना ना ना ना ना ना, हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को. शॉर्टलिस्ट हो गए गौरव, कंग्रेचुलेशन.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ.
0: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: इट्स 40 डिग्रीज आउट देयर, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है अभी थोड़ी सी 40% पर ही है, लेकिन जनरली कम हुई है. बट कल इट वाज क्वाइट विंडी एंड आज भी हवाएं तो अच्छी खासी चली रही हैं यार.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
10: Wow. Yeah.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है स्टारिंग अजय देवगन इन द मेन लीड्स तब्बू ऑफ कोर्स. लेकिन एक और शख्स जो है जिनकी एंट्री हो चुकी है ट्रेलर हम साथ में देखेंगे और एक सवाल जो हम सबके दिमाग में था वो ही पूछ लिया गया है.
2: कहानी का सीक्वल लिखना पड़े तो आपके हिसाब से इस बार क्या करेगा विजय?
3: विजय क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये या तो विजय जानता है या अल्लाह जानता है.
1: विजय सलगांवकर अब क्या करेंगे अक्टूबर 2 को पता लगने वाला है. एंड द सरप्राइज आई वाज टॉकिंग अबाउट
4: मुझे मिलने कौन आया है एसपी क्राइम ब्रांच
1: एंड दैट इज
5: शनी हूं जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना समझो उसको खराब टाइम शुरू.
1: पहचान ली होगी अब तक तो आवाज जयदीप अलावत की मैं बात कर रही हूँ. अक्टूबर 2 इट इज और ये जो केस है अब विजय का वो कोर्ट तक पहुंच गया है. जस्टिस मिलेगी नहीं मिलेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा अक्टूबर 2 को पता लगेगा. तो भाई पाव भाजी की प्लेट तैयार रखना क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद मैं हमेशा पाव भाजी जरूर खाती हूँ. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आई वाज जस्ट शेयरिंग के मेरे ग्रुप में जो मेरा स्कूल का ग्रुप है उसमें एलुमनाई मीट का एक मैसेज आया है जो होने वाली है. बुला रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं लग रहा कि मैं अपनी टीचर्स को मना कैसे करूँ. क्या इतना जो खौफ बैठा होता ना स्कूल लाइफ में, एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया मेरा. एंड इफ आई रिमेम्बर दैट, जो भी हो, स्कूल में जाके मज़े तो बहुत आते थे, लेकिन जो उठ के जाना पड़ता था, ओ गॉड. बट आपके लिए वो भी इजी हो चुका है. नाउ यू कैन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 धर्म पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स. सो बेसिकली स्कूल तक जाना भी वो भी इजी हो चुका है. अब तो क्या बहाना लगाओगे यार. कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: बिग आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। हेना स्पीडी हेयर कलर कवरिंग द चेंजेस इन द वर्ल्ड एंड कवरिंग चेंजेस इन योर हेयर राइट नाउ। दिस इज फैन नेटवर्क न्यूज फ्रॉम द बीबीसी।
2: BBC News with Chris Barrow. The US

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 37 डिग्रीज आउट देयर, लेकिन बाहर गर्मी लगती है अगर आप चलते हो। कंपैरेटिवली काफी बेटर वेदर हो चुका है, लेकिन अगर आप कहीं पे भी इंडोर्स में हो, यू एक्चुअली नीड अ जैकेट। और इज इट जस्ट मी? लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: 96.2 The Beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: करण औजला इक्की का ट्रैक सॉन्ग का नाम था बॉयफ्रेंड। एंड बॉयफ्रेंड जो है ना यार होना चाहिए आयुष्मान खुराना के करियर ग्राफ जैसा, वर्सटाइलिटी, भर भर के कूट कूट के भरी हो, हर चीज आती हो यार।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ। एंड द नेक्स्ट फिल्म ऑफ आयुष्मान खुराना आने वाली है इन सिनेमाज 9th ऑफ अक्टूबर को। करण जौहर बैक्ड अप ऑफ कोर्स। उसका नाम है उड़ता तीर। कौन सी फिल्म है, किस पर बेस्ड है, इतना खास समझ में नहीं लग रहा है। देशभक्ति याद है पर देश नहीं, दैट्स द ओनली थिंग रिटन ऑन द पोस्टर। उड़ता तीर नाम है फिल्म का। एंड आई एम वेरी श्योर क्योंकि ये आयुष्मान की मूवी है, कॉन्सेप्ट बहुत ही अतरंगी होने वाला है। स्क्रिप्ट उन्होंने वैसे इंकी पिंकी पोंकी करके नहीं, अच्छे से सोच समझ के इमेजिन करके चूज करी होगी। हैविंग सेड दैट, द नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग अप इज ऑल्सो फ्रॉम हिज फिल्म। This is that one film जिसकी you know we judged this film from the book cover, लेकिन क्या बढ़िया brain rot था। I mean I had my time in the cinema hall, हंस हंस के सब के सब लोट पट हो रहे थे। I absolutely love this one. If you have watched this, बताओ आपके reviews क्या थे 800-1062 पे कॉल करके। Until then, keep it locked to Big 106.2.

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पर मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड अगर आप भी क्राइम थ्रिलर देख देख के दिमाग चला चला के थक चुके हो, देयर इज दिस वन ड्रामा सीरीज कमिंग अप योर वे ऑन नेटफ्लिक्स 10th ऑफ सितंबर यानी कि कल रिलीज हो जाएगी. द नेम इज चुंबक. इट्स एन अपकमिंग फील गुड मल्टी जनरेशनल फैमिली कॉमेडी सीरीज. जो कास्ट है भाई, कास्ट देखकर ही मैं तो आई बॉट इट. चुंबक देखने वाली हूँ मैं 10th ऑफ सितंबर को. नीना गुप्ता है इसमें, मानसी पारेख हैं, सुमित राघवन है, अर्जुन मिजलानी है. एंड दिस इज बेसिकली दैट वन ड्रामा सीरीज जो देख के लगता है कि हाँ यार, मुझे थोड़ा हंसना है, मुझे ब्रेन रॉट देखना है, कुछ भी दिखा दो मैं हंस लूंगी. एंड द मेकर्स आर फ्रॉम साराभाई वर्सेस साराभाई, तो एक्सपेक्टेशंस वही वाली हैं. सीरीज है यार, बिंज वॉच करनी तो बनती है. 10th ऑफ सितंबर इट इज. नाम है चुंबक. यू कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: insuremarket.ie.
1: School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
1: ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
5: E11 पर आपको मिल जाएगा ट्रैफिक बिजनेस बे के अराउंड डाउनटाउन एंड टुवर्ड्स JLT और शारजा अलखील रोड। E44 देयर हैवी पॉकेट्स अराउंड मैदान अलकूज एंड दुबई हिल्स। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड E311 पर आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा इंटरनेशनल सिटी मोहेजना की तरफ टुवर्ड्स शारजा। कहीं और फंसे हो डू लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big 106.2.

0: travels, or business, over 30,000 Google reviews, and even a metro station named after us. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: So what do we know? Partners.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम एंड द सॉन्ग ऑफ द आवर वाज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae विद 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन UAE ट्रस्टेड अक्रॉस UAE. एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट. एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट. insurancemarket.ae. फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ पर आपको मिल जाऊंगी इंस्टाग्राम पर. यू हैव टू फॉलो 106.2 बिग FM या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी आर के पेज पर AVNI YAAR. कल मिलती हूँ फिर से ऑन द बिग ब्रेकफास्ट 7 बजे. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is The Big Thrill. All set to keep you company until 9. Main hoon Mansi. Wednesday ki sham hai. Today also happens to be Khiladi Kumar, Akshay Kumar ka birthday. Filhal, wherever you're going home, every single evening, हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, महफिल जमाते हैं. आज अक्षय कुमार स्पेशल करेंगे. इफ यू आर अ फैन, इफ यू लव हिज सॉन्ग्स, देन गाने की तैयारी कर लो. गाना आए या ना आए, अगर आपको गाने का शौक है तो बस आवाज आपकी, ऑडियंस मेरी. इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी. फिलहाल किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:06 एंड टाइम हुआ है जन अल्फा का, मिलेनियल्स की जिंदगी जीने का। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल का दौर जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे। अब एक रूल आ चुका है यहाँ पे स्कूल में कि स्पेशली द बॉयज दे कैन नॉट गेट अ फेड कट इन द स्कूल। मोर ऑन द स्टोरी व्हेन आई कम बैक। फिलहाल कीपिंग यू कंपनी विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक, यू स्टे राइट हियर।
2: Bollywood.

0: बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
5: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
4: डोंट वरी, आई फाउंड द बेस्ट बैक टू स्कूल रेंट अ कार ऑफर ऑन selfdrive.ae। सेल्फ ड्राइव कार्स रेंटिंग फ्रॉम जस्ट 1099 per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
7: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
8: Room ka AC cool kare bahar, Dabur Pudin Hara cool kare andar. Your अंदर का एसी with Ayurvedic mint oils for soothing relief after heavy meals.
7: Dabur Pudin Hara, stay indigestion free the natural way. Available on Noon Minutes. Consult your doctor or pharmacist before consumption.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
11: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
12: 38 degrees, low jayega around 33. Filhal, it's not very humid. Humidity hai 42% par.
11: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.
13: Big 106.2.

तेषां ये राजो छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल 106.2 द बी

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: लोग जिंदगी में पैसा ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं. मुझे लगता है मुझे ENT की जरूरत है. गला खराब है, नोज इज ब्लॉक्ड, और मुझे लगता है अब कान भी खराब हो चुके हैं. बिकॉज नगमान कॉल्ड मी एंड आई हर्ड कि इनका नाम अजमान है. हाय, गुड इवनिंग.
2: हाय, गुड इवनिंग. बिकॉज नगमा उर्दू में नगमे को कहते हैं और उससे गाने वाले को कहते हैं नगमान.
1: वाह वाह वाह, तो मतलब पूरा टैलेंट जो है आप यहीं पे दिखा दोगे. तो करते हैं क्या आप नगमान, नगमे गाने के अलावा?
2: मैं बैंकर हूँ.
1: लेकिन
2: माई पैशन एक्चुअली आर्टिक, इन चीजों पे, लिटरेचर, सॉन्ग लिसनिंग, ओल्ड म्यूजिक, सब चीज इज माई पैशन.
1: आप तो आर्टिस्ट हो, ये कहाँ बैंक में फंस गए हो?
2: बस किस्मत जहाँ उड़ा के ले जाए.
1: कोई बात नहीं, किस्मत जो है वो पलटती भी है. अगर आप अपने पैशन को पैशनेटली फॉलो करोगे तो बैंक से स्टेज तक का सफर दूर नहीं है नगमान. फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप अच्छा गाओगे. सो आई डोंट थिंक सो कि आई हैव टू बी वरिड हियर कि मेरी ऑडियंस इधर उधर ना भाग जाए. सब बड़े बेताब हैं. बड़ा खूबसूरत गाना है, अब सुनेंगे नगमान की आवाज़ में.
0: कारियो की

0: खता है हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो।
1: ओए होए होए, अब तो आपके बैंक आना पड़ेगा गाना सुनने के लिए। बट नगमान, ये नगमा आपको किसकी याद दिलाता है?
0: मुझे अपनी यूनिवर्सिटी डेज याद दिलाता है, और वो लंबी लंबी सड़क पे वॉक, तो ये गाने सुनना, और पैशनेट, मोबाइल का दौर नहीं था बिल्कुल भी।
1: एसटीडी पीसीओ पे खड़े होकर आपने गाया ये गाना किसी के लिए?
0: जी हाँ, मैंने बहुत दफा गाया ये गाना।
1: अच्छा, बहुतों के लिए कि पर्टिकुलरली एक के लिए?
0: बहुत दफा एक के लिए।
1: फिर वो है अभी के गई?
0: अरे
1: वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बहुत कम लोग हैं जिनकी पहली मोहब्बत मुकम्मल होती है, काफी किस्मत वाले हैं आप। वेरी वेरी नाइस, गाया बड़ा कमाल आपने।
0: मैं रहता अकेला हूँ दुबई में, माय फैमिली लिव्स इन कनाडा, तो अच्छा वक्त गुजर जाता है इसी तरह के गाने सुन सुन के, गा गा के, प्रैक्टिस भी होती रहती है साथ, रियाज भी रहता है।
1: तो वाइफ आपकी कनाडा रहती है?
0: जी जी।
1: ओए, ये तो बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है,
0: लेकिन क्या करें, माइल्स जो सेपरेट अस कैनॉट स्टॉप मी थिंकिंग।
1: ओए होए, मजा आ गया सर, मतलब हो आप आर्टिस्ट, बहुत कमाल गाया, थैंक यू सो मच, यू हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम।
0: थैंक यू वेरी मच,
1: बाय नगमान, बाय। यही है कैरियोकी, अगर आपको भी गाना अच्छा लगता है, यू नो द लिरिक्स, आप गाना चाहते हैं, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। कैरियोकी
2: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2. The beat of Bollywood. Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
1: School's starting soon, and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility, and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready. Get driving.
4: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस वक्त अगर आप शेख जायद पे हैं तो डेढ़ घंटे का ट्रैफिक है. आई एम नॉट लाफिंग बट आई कैन फील इट बिकॉज एक हफ्ते पहले ही मैं दो घंटे के ट्रैफिक में अटकी थी, सो आई नो द दर्द. फिलहाल दिस हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद. 47 मिनट डिले मर्डिव टू मुहेसना, वेरी वेरी स्लो मूविंग फेस्टिवल सिटी, दुबई क्रिक हार्बर, नादल हमर, रासल कोर इंडस्ट्रियल एरिया, डेरा फहीदी, रिग्गा, अगेन बंपर टू बंपर वाली सिचुएशन है. हैवी ट्रैफिक सूफू के पास, प्लस अगर आप फुरजान के हो रहे हैं फ्रॉम डिस्कवरी गार्डन्स, 15-18 मिनट डिले. हैवी ट्रैफिक नियर प्रोडक्शन सिटी, काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल, वहां भी आपको 15-20 मिनट का डिले मिलेगा. इसके अलावा कहीं अटके हो मुझे बताओ 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
6: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
7: नहीं, ये तो मुफ्त है.
6: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. चलो फोन लगाओ.
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: You know, आज तक as a millennial मैं ये सोचती थी कि इस generation को things कितनी easily मिल गई हैं. I'm talking about the Gen Z's and the Gen Alphas. मतलब school भी नहीं जाना है, distance learning है, laptop पे ये पढ़ाई करते हैं, and इतनी awareness हो चुकी है, जो उन्होंने पहनना है ये school पहन के जाते हैं. There are no rules, no regulations. But I think वक्त जो है वो बदल रहा है, justice for millennials हो रहा है. अब fade cut जो है वो school में बैन हो गया है. यू नो द किड्स हू यूज्ड टू गेट द फेड कट एंड राइट द फेवरेट फुटबॉलर्स के नाम, दैट कट इज बैंड इन स्कूल्स. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि ग्रोइंग अप एज अ मिलेनियल हमने बड़े रूल्स फॉलो करे हैं स्कूल में. लाइक आई स्टडीड इन अ कॉन्वेंट, मेरे स्कूल में हिंदी बोलने पर फाइन लगता था. यस, अगर आपने हिंदी बोल दिया एक्सेप्ट द हिंदी क्लास, देयर वाज अ फाइनेंशियल पेनल्टी. एक डब्बा रखा होता था 5 से लेकर 50 रुपए, डिपेंडिंग ऑन कितनी हिंदी आपने बोली है. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो डब्बे के पैसे जाते कहाँ थे. स्टाफ रूम में समोसे आते थे, आई हैव नो क्लू. एक और रूल था मेरे स्कूल में, 2 चोटी तेल लगा के साथ में रिबन लगाना होता था अपने हाउस कलर का. अब मेरे बाल हमेशा से बॉय कट थे, आई डोंट नो, मेरी मम्मी हमेशा बॉय कट रखती थी, बट उसके ऊपर भी हेयर बैंड लगा के जाना होता था. मैं अपनी वो फोटोज कहीं पोस्ट कर ही नहीं सकती हूँ, मैं खुद भी नहीं देखती हूँ, छुपा के रखी हुई है. कि मतलब सोचो, बाल है नहीं सर पे, उसके ऊपर इतना बड़ा हेयर बैंड लगाया हुआ है. सो बहुत वियर्ड रूल्स थे हमारे स्कूल्स में एज मिलेनियल्स ग्रोइंग अप. अगर आपको भी ऐसा कोई रूल याद आ रहा है तो जरूर बताइए 800-1062 पे. ऑल्सो देयर इज अ पोल अप ऑन इंस्टाग्राम पेज. अगर आपके स्कूल के भी ऐसे कोई आलतू फालतू जिनका कोई सेंस नहीं था ऐसे रूल्स थे, तो वहां जाके कॉमेंट करो. 106.2 बिग एफ एम इट इज.

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi and of course we're playing the 5 second rule. मजेदार गेम है, आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ categories. तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. पता है मुझे साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी में इजी साउंड करता है, बट व्हेन यू आर एक्चुअली प्लेइंग द गेम इट इज वेरी वेरी टफ. एंड ऑल्सो वी टॉकिंग अबाउट सम वियर्ड रूल्स जो आपके स्कूल में थे व्हाइल ग्रोइंग अप. सो यस, 800-1062 इज द नंबर टू डायल. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी, टाइम हुआ है 6:08।
2: Bollywood.

0: Introducing Alfred Coins, the new way insurancemarket.ae rewards you. Buy insurance. Earn Alfred Coins. Enjoy rewards. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. Yeah, we are playing the 5-second rule. And bada mazedar phone aaya Ketki ka. Ketki kehte hello. This is 5-second rule. Maine bola yes, of course. This is 5-second rule. Hi, Ketki. Kaise ho aap?
3: I'm good. I'm so sorry. I'm heading towards home. और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, मैंने बस वो लास्ट दो सेंटेंस सुने कि if anyone wants to participate, call me and उतना ही सुना बस बाकी कुछ नहीं.
2: चलो मजेदार गेम है केतकी. You'll get 5 seconds. मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी. तीन चीजें आपको बतानी होगी 5 सेकंड के अंदर. तैयार हो?
3: ओके.
2: ऑलराइट.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: तीन चीजें जो आप बना सकती हैं दही के साथ.
3: दही वड़ा.
2: अच्छा.
3: छाछ और लस्सी.
2: नॉट बैड एट ऑल. तीन ऐसी चीजें केतकी जो सिर्फ एयरपोर्ट पे मिलती हैं.
3: पासपोर्ट
2: है,
3: लगेज एंड कार.
2: कार,
3: लगेज.
2: कार.
3: कार्ड.
2: कार्ड मुझे सुनाई दिया. कार मिल रहा है. ये कौन से एयरपोर्ट पे जा रही है जो गाड़ियाँ चल रही
3: है. कार्ड.
2: अच्छा, तीन ऐसी चीजें जो आपको अपने पति के बारे में बदलनी है, अच्छी नहीं लगती.
3: हेयर स्टाइल, मुस्टाज एंड बियर्ड.
2: हेयर स्टाइल. हेयर स्टाइल में क्या खराबी होगी उनके?
3: बहुत छोटे छोटे काटता है. अभी इतने अच्छे सॉल्ट एंड पेपर लुक के लिए थोड़ा लंबा रखेगा तो अच्छा दिखेगा ना. इट डजंट लिसन टू मी एट ऑल.
2: एंड दाढ़ी मूछे, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर?
3: मूछे कुछ ज्यादा ही लंबी है, दाढ़ी कुछ ज्यादा ही छोटी है.
2: कितने साल हो गए आपकी शादी को?
3: किल मी इफ यू लिसन टू दिस.
2: हाउ मेनी इयर्स इट
3: हैज बीन? किल मी इफ यू लिसन टू दिस. 20.
2: तो शुरू में आपके कहने पे लंबे बाल रखते थे, छोटी मूछे और लंबी दाढ़ी?
3: नहीं, तभी से छोटे ही है, मगर बोलने से भी कुछ नहीं सुधरते.
2: तीन चाट के आइटम्स या चाट की डिशेस.
3: सेव पूरी, बटाटा पूरी और पानी पूरी.
2: हाय, और आप बड़े चटोरे टाइप के हो. खाने पीने के तो सारे जवाब 3 सेकंड में. तीन गाने गा के बता दीजिए या सुना दीजिए जिनमें दिल आता है.
3: ओके. मेरा दिल तुम्हारे पास है.
2: है?
3: दिल
2: टाइम खत्म हो गया. ये कौन सा गाना है, मेरा दिल तुम्हारे पास है? ये आपने बनाया है अभी?
3: वो नहीं, वो काजल और अजय देवगन का एक गाना है ना.
2: ये कौन सा गाना है जो मैंने कभी नहीं सुना? आई डोंट नो ऑफ दिस सॉन्ग. बट केतकी, आई हैव टू से most of your answers were within 3 seconds, especially when I spoke about food. 3 second ke andar sev puri, batata puri, dahi bada, ye bada, wo bada, matlab khane ke shaukeen ho aap.
3: yes, too much. me and my husband, we are foodie.
2: chalo, at least koi shauk to aapke milte hain, tabhi 20 saal saath ho.
1: 5 second rule.
2: बाल और मूछों की वजह से मुझे मामला रिक्सी लग रहा था थोड़ा सा. बट यू हैव अ ग्रेट वीकेंड.
3: हम वो फूडी में पैच अप कर लेंगे, डोंट वरी.
2: अच्छा, जब उनको आपको मनाना होता है, आप गुस्सा हो जाते हो, तो क्या खिलाने लेके जाते हैं?
3: खिलाने नहीं, तुम अपना अपना खाओ, मैं अपना अपना खा के अपने अपने मूड ठीक कर.
2: I think words of wisdom from someone who's been married for almost 2 decades. Apna apna khao, apna mood theek karo. Please don't disturb. Lovely talking to you, Ketki. And I hope you had fun.
3: Thank you.
2: Bye.
3: Thank you so much.
2: Well, agar aapko bhi khelna hai 5-second rule, ek hi rule hai. Mujhe call karna hai 800-1062 par. Toll free, ekdam free number hai. Agar aap bhi free ho, give me a call.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams on big flat rate with zero penalty on early returns.
1: बड़े कमाल जवाब आ रहे हैं. अंजलि कहती है उनके स्कूल में 9th स्टैंडर्ड के बाद ऑपोजिट जेंडर से बात करना अलाउड नहीं था. एंड ये मेरे स्कूल में भी था अंजलि. एंड सीटिंग अरेंजमेंट हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि बीच में एक रो खाली रहती थी. मतलब तीन बैठते थे ना एक बेंच पर, तो बीच में स्पेस आफ्टर 9th स्टैंडर्ड कोई नहीं बैठेगा. इट वॉज लाइक नो मैंस लैंड. इन माई स्कूल वी वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू शेयर लंच विद द ऑपोजिट जेंडर टू स्टॉप सोशल मिक्सिंग. बट जितने फ्रेंडशिप बैंड्स ऑन फ्रेंडशिप डे और जितनी चॉकलेट्स मेरे स्कूल में आती थी ना ऑन वैलेंटाइंस डे, सारे रूल्स के बावजूद. माहौल बनाया था हम मिलेनियल्स ने. आपको याद आ रहा आपके स्कूल में वो कौन सा रूल था दैट मेड नो सेंस एट ऑल? हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम. यू कैन आल्सो गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062. देखो रूल्स का मजा उन्हें तोड़ने में आता है और ये सिर्फ मिलेनियल्स जो गए हैं देसी स्कूलों में उन्हें पता होगा. फिलहाल कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9, दिस इज द बिग थ्रिल मानसी.
0: बिग 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड,
2: क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
3: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बिकॉज चोटी बांधो एंड चोटी को फोल्ड करके रिबन ऊपर दिखनी चाहिए.
1: ओ यार ये तो ये पता नहीं क्या था, लड़कियों के लिए अलग रूल्स होते थे. आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ आई हैड अ क्रू कट, लाइक स्किन दिखती थी मेरी, फिर भी हेयर बैंड लगाना जरूरी था. फॉर व्हाट आई डोंट नो.
0: हां एग्जैक्टली,
1: बाल होने भी तो चाहिए ना आंख में आने के लिए.
0: एग्जैक्टली, और प्लस बाल होने चाहिए एंड और भी अगर फोरहेड बड़ा हो एंड आल्सो वो ऑड ही लगता था, लेकिन दैट इज हाउ इट वाज.
1: स्कर्ट लेंथ का क्या सीन था स्कूल में?
0: स्कर्ट लेंथ वाज बिलो द नी.
1: हाँ, बिलो द नी. एंड सॉक्स जो है वो नी से बस थोड़े से नीचे.
0: नाउ मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड एंड अकॉर्डिंग टू टाइम इट हैज बीन.
1: ये कहाँ बच्चे समझेंगे संघर्ष हमारा. बट एक बात मैं कहूंगी, ये रिबन लगा के तेल लगा के भी जितने हमारे चक्कर चलते थे स्कूल में. हमारे स्कूल में इट वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू द ऑपोजिट जेंडर.
0: यस, इट वॉजंट. इवन दो दे वर सिटिंग नेक्स्ट टू अस बट नॉट अलाउड टू टॉक.
1: बट फिर भी हम माहौल बनाते थे. याद है ऐसा कोई स्कूल में था क्या कि किसी ने लेटर वेटर लिखा हो वो सेंटेड लेटर पैड्स पे?
0: नहीं, पापा ने बोल दिया था कोई लेटर मिले तो लेना ही नहीं.
1: अच्छा, पापा की सुनते थे?
0: हाँ.
1: I was the rebel without a cause. फिलहाल रजनी, अब आप आई हो तो आपके साथ खेलेंगे एक मजेदार गेम. 5 second rule. Oh yeah. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर फटाफट. 3 things that are black.
0: Ice.
1: हाँ.
0: Coal.
1: Okay. Time खत्म. 5 सेकंड फटाफट. आज अक्षय कुमार का बर्थडे है. 3 अक्षय कुमार की मूवीज.
0: 3 अक्षय खिलाड़ी.
1: और
0: ओके,
1: टाइम फिनिश फटाफट रजनी.
0: ओके.
1: 3 बॉलीवुड गाने जिनमें आता है वर्ड इश्क. अरे अरे अरे,
0: नहीं याद है.
1: 3 चीजें जो आपको अपने कॉलीग्स के बारे में बिल्कुल ना पसंद है.
0: ज्यादा बोलना.
1: अरे,
0: और बढ़ाई करना.
1: बढ़ाई करना, उफ. तो आप बात नहीं करते हो क्या कॉलीग्स वॉलीग्स से?
0: हाँ.
1: ज्यादा बात नहीं करते हो अपने कॉलीग्स से? बनती है नहीं बनती है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: बनती है. कि दिल से बनती?
0: नहीं नहीं.
1: 5 second rule. ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी दिल से बनती है. एक आधा होता है कॉलीग जिसकी दिल से बनती है. सबसे तो बनना नामुमकिन सा है. बट आपने बहुत खराब खेला. बट थैंक यू सो मच जितने भी जेन जीज हमें सुन रहे हैं हमारे बचपन के स्ट्रगल्स बताने के लिए. रजनी, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
0: थैंक यू.
1: बाय
0: बाय बाय. बिग 106.2. दैट्स माय सॉन्ग.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: देखो, इफ यू आर 90s बेबी ना, तो आप बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के साथ बड़े हुए हो। स्पेशली स्कूल में इतने रूल्स होते थे, दो चोटी बांधना, तेल लगा के रिबन लगाना। मेरे स्कूल में पियर्सिंग्स अलाउड नहीं थी एंड मैं फंस चुकी हूँ उस चक्कर में। इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, हिंदी बोलो तो इंडिया के ही स्कूल में फाइन लगता था। राइट नाउ गॉट रजनी। हाय, गुड इवनिंग। फिलहाल रजनी, ऐसे कौन से वियर्ड रूल्स थे आपके स्कूल में दैट मेड नो सेंस एट ऑल?

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक
0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक.
2: गुड इवनिंग. द टाइम राइट नाउ 7:06.
1: Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: वैसे आज भी वो टॉकिंग अबाउट स्कूल के रूल्स वाइल ग्रोइंग अप. फिलहाल जो उस दौर में स्कूल जाते थे, अभी स्कूल पिकअप एंड ड्रॉप कर रहे हैं. आई एम श्योर यू आर आल्सो अ पेरेंट हु इज लुकिंग फॉर द परफेक्ट कार रेंटल फॉर पिकिंग अप द किड्स फ्रॉम स्कूल, ड्रॉपिंग देम ऑफ. आई हैव गॉट द बेस्ट डील फॉर यू. गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 1099 dirhams a month. Exactly. Flat rate hai for the year. Zero penalty on early returns. Do get in touch with them for more details. Selfdrive.ae it is.
0: Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by Selfdrive.ae.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Good evening, yeah, big thrill, Mansi, and thrill and excitement to aapke liye hai because we're taking you to Germany. It's an all-expenses-paid trip and check-in karne ke liye sirf ek WhatsApp karna hota hai. Big check-in your name to 0543091062. Filhal randomizer ne aasham dhoond nikala hai Shalini ko, who is a bit nervous and excited, hai na?
2: Yes, yes.
1: Shalini, Shalini karte kya? DP to badi cute hai aapki.
2: थैंक यू. आई एम होममेकर.
1: नहीं नहीं शादी हुई है?
2: नहीं नहीं, आई हैव टू किड्स.
1: यू डोंट लुक लाइक एट ऑल 100% लाइक संतूर मॉमी की पुरानी फोटो लगा रखी है.
2: थैंक यू. आई हैव 16 ईयर ओल्ड सन.
1: रियली? तो ये फोटो किसकी है? बेटी की तो नहीं लगा रखी है?
2: नहीं नहीं, ये बेटी, ये तो मेरी है.
1: एआई से बनाई है कि खुद की है?
2: ये मेरी है और अभी की है.
1: बालिका वधु तो नहीं थी कहीं तुम शालिनी?
2: नहीं नहीं.
1: यार स्किन केयर सीक्रेट्स तो बताना मुझे जरा इस कॉल के बाद.
2: पहले जर्मनी लेके जाओ तब वहां
1: ये देखो, ये देखो, गांव बसा नहीं लुटेरे आगे कैसी दुनिया हो चुकी है. लेन देन वाली दुनिया है, मैं कह रही हूँ दोस्तों, लेन देन वाली दुनिया है. कोई नहीं बचा है अपना इस दुनिया में फिलहाल. शालिनी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रैवल्ड?
2: एक्चुअली रिसेंटली अभी मैं इंडिया ट्रैवल करके आई हूँ.
1: इंडिया तो हम शॉपिंग करने, रिश्तेदारों को गॉसिप देने और उनसे लेने जाते हैं. हॉलिडे, नई डेस्टिनेशन?
2: यूएस गई थी अभी.
1: वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. हैव यू बीन टू जर्मनी बिफोर?
2: नो.
1: चलो जी, आपको दे रहे हैं मौका शॉर्टलिस्ट होने का. वेरी सिंपल, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी बॉलीवुड नॉलेज ठीक ठाक होगी. आई एम गोना प्ले यू अ गाना, उसका इंट्रोडक्शन इनफैक्ट. आपने 10 सेकंड के अंदर गाना पहचानना है, ठीक है शालिनी?
2: या
1: ऑल द वेरी बेस्ट. इट्स टाइम फॉर द बिग चेक इन.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Do dil mil rahe
1: hai,
2: magar छुपके पर्दे खूबी.
1: ब्यूटी एंड ब्रेन्स आई मस्ट से, मतलब 2 सेकंड के अंदर गाना भी पहचान लिया.
2: माय फेवरेट मूवी.
1: इट्स योर डे शालिनी, इट्स योर डे. आपका फेवरेट गाना आया, आपका नाम रैंडमाइजर ने निकाल लिया. सो कंग्रेचुलेशंस, यू शॉर्टलिस्टेड. होपफुली द अगला कॉल दैट यू गेट इज शालिनी, पैक योर बैग्स, वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी.
2: थैंक यू सो मच.
1: तो कर लेना कुछ, मतलब मन्नत वन्नत?
2: अरे एकदम सब कुछ रेडी है, शॉपिंग रेडी है, पासपोर्ट रेडी है.
1: स्किन केयर भी रेडी कर लेना. याद रखूंगी मैं ये जर्मनी साथ जब चलेगी ना, अगर शालिनी हमारे अगर, तो मैं ये याद रखूंगी. चलो यार, ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू. बाय.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
2: कर ही नहीं सकते, चाहोगी तो नहीं कर सकते।
3: हाय कोमल, जर्मनी की तैयारी क्या कर रही है कोमल आपने?
4: तैयारी, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू नो, आई मीन वंस आई एम फाइनलाइज्ड तो जस्ट बैग लेके निकलना है, दैट्स इट।
3: तो बैग्स पैक्ड हैं आपके, ओओटीडी रेडी हैं?
4: एवरीथिंग।
3: अभी तक तो आ जाना चाहिए था।
4: नशे से चढ़ गई, नशे से चढ़ गई। आई एम ऑलरेडी डांसिंग बाय द वे। हां,
3: मुझे लगता है दिस इज यू जब आप जर्मनी जाओगे। नहीं,
4: यस यस
3: Yes, थैंक यू सो मच कोमल, आपका नाम आज के लिए रजिस्टर हो जाता है एंड लेट्स सी आप नेक्स्ट ड्रॉ में जो निकलता है जर्मनी जाओगे या नहीं। कांग्रेचुलेशंस।
4: थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: स्लो मूविंग ट्रैफिक स्टिल अगर आप हेसर स्ट्रीट पे हैं, स्पेशली इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी, आपको ट्रैफिक मिलने वाला है 17 टू 22 मिनट डिले। देयर इज हैवी ट्रैफिक स्टिल मारिफ टू मुहेस नाइफ टेकिंग द शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, 47 मिनट डिले राशिदिया फेस्टिवल सिटी उमरमूल गरूद, ऑल स्टिल स्लो मूविंग। शेख ज़ायद पे फिलहाल 35 मिनट डिले। ऊद मैथा दो इज पैक्ड, बम्पर टू बम्पर सिचुएशन है वहां पे। देयर इज पैची ट्रैफिक दैट यू माइट फाइंड नियर अलकूस फर्स्ट एंड नियर अलकूस 3। इसके अलावा इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स सूफू वहां भी 12 से 18 मिनट का डिले एंड टूवर्ड्स फुरजान एज वेल। कहीं और अटके हैं मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: the Gen Z's know Arjun Rampal from this movie Dhurandhar, but the OGs...
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Know him from a lot of movies, including this one, जो आज ही के दिन 2002 में रिलीज हुई थी. कास्टिंग सुनो, महिमा चौधरी, जिमी शेरगिल, अर्जुन रामपाल, प्रिटी जिंटा एंड ऑफ कोर्स द आइकॉन, द डीवा रेखा जी. बहुत ही अच्छी मूवी है. बॉलीवुड क्रिंज कंटेंट अगर आपको पसंद है तो ये मूवी आपको अच्छी लगेगी. और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पे ये मूवी अवेलेबल है. 180 मिलियन व्यूज है. आज भी कई बार ऑन अ रैंडम डे

0: A bump, a break-in, a hospital bill. Suddenly, insurance really matters. That's when insurancemarket.ae delivers. For claims or cover, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Good evening, ये है Big Thrill Mansi. And of course, a while ago I gave you a few hints. मैंने आपसे कहा था कि movie आई थी 2002 में, did not perform really well at the box office, but music was a massive, massive hit. Complicated relationship and a love triangle. Rekha Ji, the iconic Rekha Ji, साथ में Pretty Zinta, Jimmy Shergill, Arjun Rampal, Mahima Chaudhary, right now Deepak. Deepak ने phone किया मुझे, कहा मानसी मुझे movie पता है but नाम नहीं याद आ रहा है. गाना याद है वो आपको? उसाहिबा बहुत भैया, मतलब भैया बोल रहे हो आपको, सॉरी बुरा तो नहीं लगा ना? लग गया. मैं बोलने वाली थी हमारे बस वाले भैया जो है वो ये गाना बजाते
3: हैं. दिल है तुम्हारा मूवी का नाम है.
2: क्या नाम है?
3: दिल है तुम्हारा.
2: तो याद तो आ गई आपको मूवी?
3: मैंने गूगल से ढूंढ के निकाला अभी.
2: कितना सच, इतना सच. बट टेल मी, आपने ये मूवी देखी है?
3: हाँ मूवी देखी है मैंने. आई लाइक द मूवी.
2: आई लव दिस मूवी. दिस इज माय गिल्टी प्लेजर. जुदाई एंड दिल है तुम्हारा मैं कभी भी देख सकती हूँ.
3: ये तो मूवी नहीं देख सकते. जुदाई आई कैन सी. जुदाई इज आल्सो अ नाइस मूवी.
2: अच्छा ये आप नहीं बार बार देख सकते? मुझे पता नहीं, मूवी बहुत अच्छी लगती है.
3: One time,
2: मैंने कम से कम 100 टाइम देखा. YouTube पे ना इस मूवी को 180 मिलियन व्यूज मिले हैं. आई थिंक आई हैव कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द व्यूज.
3: पहले तो ऑप्शन नहीं होता था हम लोग के पास, एक ही जो मूवी आता वो देखना पड़ता था. तो वो ये मूवी तो मैंने देखी है, काफी बार देखी है. अभी तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन.
2: दिल है तुम्हारा, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, मोहब्बत, बहुत ही अच्छे गाने थे. सुने आपने इस मूवी के गाने? फेवरेट कौन सा है?
3: फेवरेट
2: आज से जाने मन
3: दिल है तुम्हारा.
2: तो प्रिटी ज़िंटा ज़्यादा अच्छी लगी थी कि महिमा चौधरी के रेखा जी?
3: प्रिटी ज़िंटा एनी टाइम. नो प्रिटी ज़िंटा एनी टाइम.
2: हां प्रिटी ज़िंटा इज प्रिटी ज़िंटा. फर्स्ट क्रश है आपकी? वेरी नाइस. अभी आजकल कौन चल रहा है? हु इज योर क्रश राइट नाउ? मैंने तो भैया बोल दिया, मेरा नाम मत लेना.
3: नाउ आई लाइक क्रिटी सेनन.
2: उनसे भी पूछूंगी कभी मैं मिलूंगी तो. डू यू लाइक दीपक? आई एम जस्ट किडिंग दीपक, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, लवली टॉकिंग टू यू. ठीक है, आपके और आपके प्रिटी ज़िंटा के प्यार के लिए गाना भी चला देते हैं. ठीक है,
3: नो प्रॉब्लम. बाय बाय बाय.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब. सिंक इनटू द बिग चिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo!
3: There's one thing that I absolutely love, and that is winters. Oof, oof, maza aane wala hai. Hi, Gaurav.
4: Hi.
3: How are you?
4: Hi, Manti. All good, all good.
3: Ek kahan basement mein baith ke baat kar rahe ho?
4: Nahi, bas ye building ke corridor mein aa gaya tha.
3: तो आप ऑफिस में अभी भी तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
4: जी, किसी को बताऊंगा नहीं, अकेले अकेले जाऊंगा।
3: बहुत बढ़िया, वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ। बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है, देख के लगता है यू आर इनटू रियल एस्टेट।
4: यस यस, राइट, दैट्स राइट।
3: तो आपको हमारी क्या जरूरत है यार, रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है, वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं। मैंने सुना है गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
4: नहीं, जर्मनी नहीं, बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली।
3: ये देखो मैं कह रही हूँ, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है फिलहाल। तो आपका गाना है कौन सा गाना है गौरव?
4: वो हसीना वो हिलम पड़ी, कर गई जैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली, हाँ दिल में बेचैनियां हैं भरी।
3: ना ना ना ना ना ना ना ना ना, हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को।
4: थैंक यू, थैंक यू।
3: शॉर्टलिस्ट हो गए गौरव, कांग्रेचुलेशन।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। नो रश, नो नॉइस, जस्ट soul soothing music on a moonlit ride. This is the big chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पाँच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.